वेलकम बैक ट्यून कच्चन म्यूजिकल यूर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे रेडियो वन सबर सागर अच्छा आपन को सहित सो चलची मो देश फ्रेंड्स 1866 मसिया मे 9 तारिख रे महाराष्ट्र रो गुटे साधारण परिवार रे गोपाल कृष्ण गोखले जन्म ग्रहण करथिले परिवार रो आर्थिक अवस्था शक्तिशाली नथिले सत किंतु शिक्षा प्रति तांको आग्रह बहुत थिला गोखले विश्वास करथिले जे देशर उन्नति पई शिक्षा होची सबठरो बड अस्त्र से संजम शांति ओ आलोचना माध्यम रे देशर समस्यार समाधान पई चाहथिले शिक्षार प्रसार हो कि समाज संस्कार पई सारा जीवन से निज जीवन को उत्सर्गीकृत करथिले

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार

भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

औरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के टिके रह गए। उन्हें हमारी धरती माँ ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, माँ ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सी

हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले

0: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ସୀମିତ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରୋପକାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଚିନ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନକୁ। ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ 100.4 ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସକାଳ 6ଟା। ଶୁଣନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षो में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया।

नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुनिश्चिंत्य आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक कार्यक्रम चली भक्ति संगीतर अर्घ्य थाली आज सकाल आपणी आपणक साथी स्मृति को शंखक्षेत्र पुरी अत्यंत पवित्र स्थान हिंदू धर्मावलंबी मैंने पुरी में पवित्र पंचतीर्थ में बुड़ पकईले पुरी को करिथिबा तीर्थयात्रा सफल हुए बोली विश्वास रखती बंधु एक पंचटी तीर्थ बा पंचतीर्थ हेउछि जलाश्रय जहां इंद्रद्युम्न पुष्करिणी रोहिणी कुंड मार्कंडेय पुष्करिणी श्वेतगंगा पुष्करिणी एवं महोदधि एक पंच पुष्करिणी में बुड़ पकई महाप्रभु श्रीजगन्नाथ दर्शन कले सबु पापता

सुनिछन्ती भक्ति संगीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाली। तबे श्रीक्षेत्र स्थित पांचटी पवित्र जलाशय हेउछि इंद्रद्युम्न पुष्करिणी, रोहिणी कुंड बा मार्कण्डेय पुष्करिणी, श्वेतगंगा पुष्करिणी एवं महोदधि। बोध ब्रह्मपुराण पुराणरे एही पंचतीर्थकु मार्कण्डेय पुष्करिणी, बटमंदिर कृष्ण अर्थात जगन्नाथ, रोहिणेय बलभद्र, महोदधि एवं इंद्रद्युम्न पुष्करिणी बोली उल्लेख करा जाय छि। एही रोहिणेय रोहिणी कुंड मध्य हेइ पारे। सेभळी स्कंद पुराणरे लेखा अछि मार्कण्डेय कल्पवृक्ष, दारु ब्रह्म, महोदधि एवं इंद्रद्युम्न सरोवर। मुक्ति चिंतामणि एवं हलधरकृत स्मृति दर्पण अनुसारे एहि पंचतीर्थ हेला मार्कण्डेय पुष्करिणी, श्वेतगंगा, रोहिणी कुंड, महोदधि एवं इंद्रद्युम्न सरोवर। सेभळी सारळा दासंकर महाभारत वनपर्वरे उल्लेख रहिछि पंचतीर्थ विषयरे महोदधि, रोहिणी कुंड, श्वेतगंगा, इंद्रद्युम्न एवं मार्कण्डेय सरोवर। तेबे श्रीमंदिरर स्वतलिपिरे मार्कण्डेय, श्वेतगंगा, समुद्र, स्वर्गद्वार, चक्रतीर्थ एवं इंद्रद्युम्न पुष्करिणीकु पंचतीर्थ बोली कुहा जायछि।

ट्यून करी छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाळ 6:51 मिनिट ऑलरेडी हे गलाणी एंड आपण माने आज सकाळ रे सुनी छंदी आपणक साथ ही स्मृति को सो माय फ्रेंड्स सप्ताहर द्वितीय दिन आई मीन आज हूँ ट्यूजडे मंगलवार सो समस्ते वर्तमान सकाल सकाल उठे निजर नित्यकर्म सारे व्यस्त ही पड़े कारण आउ किछ समय परे समस्ते निज निजर कर्म पथरे आगक बढ़ी जिवे सो फिलहाल मने जो मने सकाळ सकाळ एफएम रेनबो को ट्यून करी छंदी समस्तंकु एफएम रेनबो तरफ रु स्मृति तरफ रु अ वेरी गुड मॉर्निंग सो चलते जाणी नवा कौन रही आज वेदर अपडेट यस स्वाभाविक समय तीन दिन विलंबरे चलित वर्ष केरलम छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु किंतु बंधु ओडिशा को स्वाभाविक समय रे मौसुमी आसीपे पूर्वानुमान अर्थात जून 10-12 तारीख मध्य मौसुमी ओडिशा छुईब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पक्षरु कहा जाइछि साधारणतः जून 1 रे केरलम छुईबा परे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जून 10-12 तारीख मध्य ओडिशा छुई थाए जदि ओडिशा को मौसुमी आगमन पई मौसुमी रो केरलम आगमन अपेक्षा बंगोपसागरीय पाणीपाग अधिक गुरुत्वपूर्ण तथापि चलित थर केरलम भली ओडिशा को मौसुमी आगमन विलंब न हो पारे बोली पूर्वानुमान करा जाइछि सेपटे देश में मौसुमी अग्रसर होबारे लागिछि तेबे आज राज्य गतकाली राज्यर पश्चिम केन्द्रीय एवं पूर्व केन्द्रीय आरब सागर किछि अंचल कर्णाटक संपूर्ण गोवा महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश किछि अंचल तमिलनाडु एवं दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में अधिकांश अंचल संपूर्ण पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर मिजोरम मणिपुर किछि अंचल को मौसुमी अग्रसर हो सारी अन्यपटे राज्य में ताती सह गरम गुळगुळी जारी रही

आपको आकर जगाए, ठंडी सी हवा आपके चेहरे को सहलाए, हर नया दिन आपके जीवन में सफलता और खुशियां लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, नई सुबह की नई किरणें, नई उम्मीदें और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा लेकर हाजिर है आपका अपना मॉर्निंग शो सुबह सकाळ। और मैं हूँ आपकी दोस्त, हम सफर हो स्मृति, और अगले कुछ पलों तक हम साथ साथ करेंगे इस खूबसूरत सुबह का स्वागत। सो समस्त गुड मॉर्निंग जो मैंने वर्तमान एफएम रेनबो को ट्यून कर सकाल सकाल अरे बाबा निदा तो भांगी सारी बनी ना सो सकाल टाक ऊर्जामय मैंने पॉजिटिव करने एनर्जाइज करने एफएम रेनबो को शुणी आपण मान पूरा पूरी दिन पॉजिटिवली ही जीव, बहुत ही भल रही कारण म्यूजिक इज थेरेपी यार। एंड जदि सकाल सकाल निजर मनपसंद गीत आपण मैंने शुणापी पाती ताल दिन सारा बहुत ही फ्रेश फिल करेंगे। सो आज सुंदर सकाल आपणको जणाउछि ढेर सारा शुभेच्छा एवं अभिनंदन। जीवन रो प्रत्येक सकाल आपण मानक आसु गोटे नुआ सुजोग नुआ आरंभ। यस, सूर्यंक प्रथम किरण जेमती पृथ्वी को आलोकित करे सेमती आपणक जीवन मध्य सुख शांति एवं सफलतार आलोक भरी जाउ। तेरे सकाल सकाल गोटे कथा कहिबे, सकालर सूर्य कहे उठ आगक बढ़, नुआ स्वप्न को नहीं जीवन रे आगे चलो। बस एफएम रेनबो एतिकी ही कहिबो एंड कहिबो दिल से दिल तक। आसी गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय करंतु, ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग रे रही थांतु स्मृति सहित एमती चिपकी की एफएम रेनबो कैटेगरी।

तो ये गाना हाय हाय हाय जब भी सुनते हैं ना ये दिल चुरा ही लेता है दोस्तों। सुबह सुबह अगर आशा भोसले, मोहम्मद रफी और इस टाइप के गोल्डन वॉइस अगर सुनने को मिले गानों में तो क्या बात है। सुन रहे थे आप यादों की बारात फिल्म का ये ब्यूटीफुल सा गाना और एफएम रेनबो कटक में शो चल रहा है सुबह सकाल। सो फ्रेंड्स चाकअप सहित जदि आपण माने हम शो को सुनिछंदि तबे ई सकालटी आहुरी सुंदर हेइछिब जदि आपण आपणक मनपसंद गीत सुनिबे। एवं ता सहित गोटे कथा मु आपण माननकु कहिबी जे लाइफ रे सबुठारु बड शक्ति हेउछि निजर सेल्फ कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास। जे निज उपर विश्वास रखे ना से असंभव को मध्य संभव करि पारे। ताले चलंतु ना आज निज मन भितर से गोटे पॉजिटिव थॉट्स नेबा जे जहा भी सिचुएशन आसुना कहेंगे परिस्थिति आसुना कहेंगे निज मुहरे गोटे बिग स्माइल सब बेले आपण माने रखिबे। केबे भी नेगेटिव भावना आपणक मन भितर जमा भी आनिबेनी। ऑलवेज सकारात्मक चिंताधारा आई मीन पॉजिटिव थॉट नेके जदि दिन टिकु आरंभ करंती ताले लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हे जीव। ए जेमती ब्यूटीफुल ए सुंदर गीतटी आसी आपण मानक पाखकू शुणु था एफएम रेनबो कटक को यस 100.4 दिल से दिल तक।

तो दोस्तों आप सुन रहे थे अमित कुमार और एस जानकी जी की आवाज में वो फिर आएगी फिल्म का ये सुंदर सा गाना आओ सुनी छंदी आपण माने आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को ट्यून करी छंदी यस आपण मन को पाख को आमे पहुंचे छु 100.4 फ्रीक्वेंसी रे एंड जो माने फ्रीक्वेंसी बाहर आम को सुनी छंदी आई मीन नामर बहुत फ्रेंड्स छंदी जो माने की ओडिसा बाहर भी आम को सुनी छंदी न्यूज ऑन एआईआर ऐप लाइव स्ट्रीमिंग रे आम सहित कनेक्टेड छंदी सो आज रे सकल रे आपण को साथी स्मृति रही छी आपण मन को पाखरे एंड सो चली छी सुबह सकाळ।

जी हाँ दोस्तों, जब किसी की याद आती है तो सब कुछ बिराना लगता है, किसी भी भल लगे नी। मन जिते आनंदमय परेश मन भितर कौटि ना कौटि गोटे खटका लगे थाए जे हाय काश से मो पाखे था कि तो ये तो है दिल की बातें, और दिल की बातें तो हमेशा होती रहती है एफएम रेनबो कटक में, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही है दिल से दिल तक। तेणु एफएम रेनबो कटक को जिते बड़े आपंट आज सुंदर सकाल सो चली शुभ सकाल स्मृति रही आपणक सहित सो सकाल सकाल टिके हेल्थ टिप्स विषय भी जानवा दरकार बिल्कुल, कारण हेल्थ अच्छी जदि वेल्थ अच्छी, आई मीन हेल्थ इज वेल्थ, जदि सुंदर स्वास्थ्य टी अच्छी आपणकर ताहले आपण ए सुंदर जीवन को अनुभव करिपरिबे एन्जॉय करिपरिबे। तेणु सतर्क रहिबा निहाती भावरे आवश्यक, एंड निज शरीर को बोथ फिजिकल एंड मेंटल माइंड को ठीक रखिबा आवश्यक। सो कथा होतलो चा पीवा पूर्वरु पानी पीवा उचित कि नाही। चा पीवा पूर्वरु पानी पीवा स्वास्थ्य पई बहुत लाभदायक बोली कहा जाय छी, जोटा कि आपनको अनेक लाभ देई थाय, जेमति कि एसिडिटी बंद हेबा, चार जो एसिडिक प्रकृति थाय तो से जिनिसटी जमा भी हबनी चा पी, माने जदि पानी पीवा परे चा आपण पिउछंती खाली पेटरे चा पीवा द्वारा शरीर रे एसिड रो स्तर बढ़ी जाय थाय। तेणु 10-15 मिनट पूर्वरु जदि आपण गोटे ग्लास पानी पिउछंती ताहले पेटरे एहा गोटे सुरक्षा स्तर रूपरे सृष्टि हेय थाय, जोटा कि चा तापरे जदि आपण गरम चा पिउछंती सेटा एसिडिटी क्रिएट करिवनि बा आपणकर पेट जळापोडा हबनि जमा भी। सेमती आउ गोटे कथा होची चारे टैनिन बोली गोटे पदार्थ थाए, जोटा कि आपणकर दांत को हलदिया करिपारे। पानी पीवा द्वारा प्रथमे आपणक दांत उपरे गोटे हाइड्रेट स्तर सृष्टि हुए जहाँकि चार दाग को रोकिबारे साहाय्य करे। आउ गोटे कथा होची हाइड्रेशन मेंटेन करिबा मध्य निहाती भावरे आवश्यक, जदि आपण पूर्वरु पानी पिउछंती ताहले शरीर रे पानी रो अभाव को जो रोकिबारे साहाय्य करिथाए पानी, माने आपण जदि पानी पी कि चा पिउछंती ताहले सेटा आपणक पई बहुत भल। सेमती चा परे जदि आपण पानी पिउछंती सेटा ठीक ना भूल से विषय मु आपणक रिवील करबी निहाती भावरे, बट फिलहाल वर्तमान चलंतु एन्जॉय करिबा गोटे ब्यूटीफुल स्वागत। अच्छा आपण मनंक पाखकु शुणु थांतु आमकु

किशोर कुमार जी की आवाज में सौतन फिल्म का ये सुंदर सा गाना जो कि जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है कि जिंदगी बिल्कुल ऐसा ही है, प्यार का ही गीत है। अगर प्यार से अगर गीत गाओगे या प्यार से पॉजिटिवली अगर ये जिंदगी को लोगे तो ये जिंदगी भी प्यार से आपको सहलाएगी और खुशियां देगी। सो फ्रेंड्स, लाइफ रे जहाँ भी आसुना कहें कि स्मृति सबुबले कही थाए जे स्टे पॉजिटिव, सबुबले पॉजिटिव रहिबा ही दरकार। आम जमी भाभी था सही प्रकार एनर्जी ही आम चतुर्पार्श्वे आसी था आम लाइफ रे इम्पैक्ट पकई थाए। सो जदि आप पॉजिट भावुंत पॉजिटिविटी आट्राक्ट करेंगे, जदि आप नेगेटिव भावुंत नेगेटिविटी आट्राक्ट करेंगे। तबे कथा होतलो जे चा पीबा परे पानी पीबा ठीक ना नाही। चा परे जदि आपण तुरंत पानी पिउछन्ते सेटा आपणको स्वास्थ्य पय बहुत क्षतिकारक हे पारे। विशेषज्ञको मतरे एरो अनेक असुविधा रही छे, जेमति कि दांतर सेंसिटिविटी आसी जाय थाय, जेमति कि चा गरम हे थाय जेतेबेले आपण साधारणतः चा पीवा परे साधारणतः ठंडा पानी पी देउछन्ते बा नॉर्मल वाटर भी होना काहेकि पिउछन्ते पानी ठंडा थाय, हठात तापमात्रा परिवर्तन आपणकर दांतर एनामल को क्षति पहुंचे परे, जहां फळरे आपणक दांत झिमझिम हेताय एवं तार सेंसिटिविटी लॉस हेताय। सेभळी भाबरे हजम जनित समस्या मध्य देखा दे पारे। आयुर्वेदिक अनुसार, आयुर्वेदिक शास्त्र अनुसार किछि अत्यधिक गरम एवं तापरे किछि अत्यधिक ठंडा जदि आपण खाउछन्ति सेटा आपणक शरीरर जो टेम्परेचर रहिछि सेटाकु इम्बालांस करि देथाय। गरम चा परे जदि आपण तुरंत पानी पिउछन्ति सेटा पीबा द्वारा आपणक पेटर तापमात्रा हठात भाबरे आपणक पेट किछि भी बुझि पारेनि सो हठात भाबरे ह्रास पाइथाय, जोटा कि आपणकर हजम प्रक्रियाकु मंथर करि देथाय एवं आपण को भारी लागिबा किंबा गैस लागिबा भली मध्य समस्या सृष्टि हे पारे। सो

समय फ्रेंड्स सोने चंदी आकाश वाणी एफ एम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान हेबा पई जाउ छे सकाळ 8:00 हमर परवर्ती कार्यक्रम सुनि परिबे आकाशवाणी दिल्ली रो किछ समय मध्य रे।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी।

0: आज जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख

0: रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक GPS से निगरानी, वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से

बिल्कुल दोस्तों, फिल माई दिल एंड दिल कहे तुम्हें थाओ पाखरे सब रास्ता सहज लगे, तुम्हें हसी देले मो सकाळटा स्वर्ग परि लगे। फ्रेंड्स, प्रेम होची सबुठारो सुंदर मानवीय अनुभूति। सो प्रेम करंतु किंतु हृदयरो, संपर्क गढ़ंतु किंतु विश्वास रे, आउ हसु थांतु कारण आपणंक हस कहार प्रेमर कारण हेइ पारे। आज सकाळ रे मु आपणंक आरजे स्मृति, आपण माने सुनिछंती सो मॉर्निंग मेलोडी।

कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाल रे आपण माने सुनि छंदी आपण को साथी स्मृति को सो चली छी मॉर्निंग मेलोडी सो आज रे सुंदर सकाल रे प्रेम रो मीठा कथा सह आरंभ करिबा आमर ए यात्रा माने आरंभ तो हे सरी छी आ ता सहित रही छी दुई जण बॉलीवुड अभिनेत्री कर आज होची जन्मदिन सो आज हूँ जून 9 तारीख बॉलीवुड स्टाइल आइकन सोनम कपूर एवं अभिनेत्री अमीषा पटेल कर आज हूँ जन्मदिन यस सोनम कपूर का जन्म 9 जून 1985 एवं अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1975 सो प्रथम कथा हवा स्टाइल आइकन फैशन क्वीन सोनम कपूर का विषय रे यस 1985 आज रो दिन रे जून 9 तारीख रे जन्म नेथिले सोनम कपूर बॉलीवुड रो जने प्रसिद्ध अभिनेत्री अभिनेता अनिल कपूर का कन्या एवं से नीचे तांका प्रतिभा रे ही इंडस्ट्री रे तांकर निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करी छंती बिल्कुल बहुत ही सुंदर सुंदर फिल्म से आपण मान को भेटी दे से नजाकियत जो स्टाइल जो एक्टिंग रे से आपण मन को छुई सावरिया निर्जा रांजना एंड प्रेम रतन धन पायो यही बॉलीवुड फिल्म रे से चरित्र को देखी चलचित्र रे अभिनय दर्शक माने साउंटी प्रशंसा साउंटी दर्शकों तेबे सावरिया फिल्म थिला ही प्रथम डेब्यू फिल्म थिला सो फैशन रे निजस्व स्टाइल पई सोनम को अनेक फैशन डीवा बोली मध्य कहि थांती सो आज ही होची तांकर हैप्पी वाला बर्थडे तो चलंदु सावरिया फिल्म रो ब्यूटीफुल गीत सुनुची तांकर अभिनेता फिल्म रो गीत तांकर फर्स्ट डेब्यू फिल्म एन्जॉय करंदु

Hey friends, welcome back. Tune karichanti Akashvani FM Rainbow Katak 100.4 Dil Se Dil Tak. Sunichanti enjoy karichanti morning melody so ko melodious gita sahita. Aja sagalare apananka saha jodi he jaichi apananka sath he smriti. So सोनम कपूर का कथा तो कहिले आज तंकर हैप्पी वाला बर्थडे आउ जणे सुंदरी अभिनेत्री तंक कथा केमती पासरी जीव अमीषा पटेल का मध्य आज होची बर्थडे यस माय फ्रेंड्स 1975 रे आजर दिन रे जून 9 तारीख रे जन्म नेथिले अमीषा पटेल निजरा प्रथम डेब्यू फिल्म थिला कहो ना प्यार है जहाँ द्वारा से राता राती पूरा पूरे स्टार बनी जाई थिले परे गदर एक प्रेम कथा चलचित्र रे सकीना भूमिका तंकु घरे घरे परिचित करी दी थिला वर्ष परे वर्ष मध्य से ही चरित्र को दर्शक भूली पारी नहांती वर्तमान गदर टू रे मध्य पूर्णी थरे दर्शक माने तंकर तंकु भल पाई छंदी तंकु भल पाइबा दे छंदी साउंड छंदी भल पाइबा सो आज ए दुई अभिनेत्री हैप्पी वाला बर्थडे मॉर्निंग मेलोडी पक्षर जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा हैप्पी बर्थडे सोनम कपूर हैप्पी बर्थडे अमीषा पटेल सो चलंतु अमीषा डेब्यू फिल्म रो गीतटी एंजॉय करिबा

0: FM Rainbow. Yes, my friends, sakala 9ta to already heigalani and ta sathe sathe so madhya start heigalani most awaited so dial in live jothre ki smruti sahita apan mane FM Rainbow platform re vartaman live jodi hei paribe amara dial in number ti prathame tipi rakhantu yaar 0671 katak code 2303153 au thare kahi rakuchi 0671 2303153 ei number re apan mane mo sahita direct katha hei paribe dial in live re तो आज आपणमानंक पाखकु स्मृति नेकि आछि गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक यस वर्तमान तो डिजिटल दुनिया वर्तमान आपण माने जेतेबेले बाहर को जाउछन्ती जदि सपोज आपण पर्स घरे भूली जाउछन्ती बा आपणक पाखरे कैश नै ताले आपणक मुंडरे टेंशन भी नै काहे कहिले कारण वर्तमान डिजिटल पेमेंट रा जमाना सो आपण डिजिटल पेमेंट करूछन्ती जिनिस जहां भी आपणकर दरकारी जिनिस रहिछे ताकु नेकि आसुछन्ती आउ हटहटा बा हैरान हबाकु पडुनी तेबे आज स्मृति आपण मानंकु पचारुछि जे डिजिटल पेमेंट और कैश पेमेंट कोटा बेसी प्रिफर करंती आउ काहे कि प्रिफर करंती से विषयरे आपण माने मो सहित कथा हि परिबे 0671 2303153 रे ओके कहू कहू फोन रिंग हेबा तो ऑलरेडी स्टार्ट हेगलानी तबे सेठी मो गोटे कथा इठी आपण मानको कहबी जमा भी फोन बिजी रखंतोनी जो माने ऑलवेज सब बेले कॉल करछन टिके बिरति नियंतो देखियो हमर फर्स्ट कॉलर की अछंती हेलो
1: जय जगन्नाथ नमस्कार
0: नमस्कार जय जगन्नाथ
1: ओ रेडियो लवर नारायण प्रधान बी बरमपुर बुगुडागंज
0: नारायण भाई केमती अछंती
1: हाँ बढ़िया अच्छे ठंडा ही जो खरारे आइसक्रीम बिक्री कर पानी पी दो ठंडा पानी टी
0: हाँ
1: ठंडा थर दी
0: एहे कलाओ थेत लागि तंटीटा टिके बस जाई छियो नै कि
1: आगे
0: अच्छा हो केदो खरा रे जते बळे भी बोलु छंती सते बळे सांगे सांगे आपण ठंडा पानी पियंतु नै टिके छाई रे बसंतु झाळ फळ पोछी साला परे टिके रिलैक्स हे साला परे देन ठंडा पानी पीबे हले ताले जकी भलो होबो अच्छा कोन दो डिजिटल आपण तो व्यापार करु छंती तो डिजिटल पेमेंट बा कैश पेमेंट कोटा को प्रेफर करंती आ काहे कि
1: मते वर्तमान डिजिटल पेमेंट ता भल लागु छी
0: फोन
1: पे जोटा कि ताईना किछ लोक पैसा धर न खाउ छी भाई कोन आइसिंग खाइबा
0: अच्छा
1: आ त कनो मु तांको मो फोन पर कोई पठाए आ कि नागुरु कोन लोक होला किछ लोक बाकी खाइ देथु रेगुलर लोक थिले सब मा चला गथिले
0: अच्छा
1: कोन भाई फोन पे छी मो कोन फोन पे मो नथिला
0: त
1: आउ कया कोन करे पैसा नाही आउ रेजा नाही आउ मु काल के खाबिन खाइ के पैसा मिलुला के पैसा मिलुला
0: ओके
1: आउ किन वर्तमान मते लोक को ठकिया ठका नै मते जे पैसा नाही मु भाई मोबाइल रे फोन पर कर दियो तने करे बाध्य ताले मु आइसक्रीम दे परिन
0: ओके
1: आउ आउ आउ कथा मते मु मोर बते मु इनकम करछ मते मु किछ हमर व्यापार लोक छन से ताले जो घर को फोन पे कर पैसा आउ मते 1000 टका रे 20 टका दो कमीशन
0: किछ
1: लोक छन मु कमीशन मते कर दो छी के 10 टका के
0: अच्छा
1: बढ़िया तापर कहले बर्तमान सेटा चालुनि बंद अच्छी मुझे पैसा कटिगला तापर कहले से रिटर्न आसुरी कहले रिटर्न नंबर पर रिटर्न आसीगला पैसा
0: अच्छा ठीक अच्छे तो एमती तो बहुत जिनस हुए किंतु आमर जो जहां भी डिजिटल पेमेंट आप सब बाहरी जोटा कि ऑथेंटिक तो से सब जिनस रे आमर किछ प्रॉब्लम हुए नी केतबले केमती ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम रही थाय जोथरे कि हमको पैसा आसीबा बा नेणो देणो जोटा ट्रांजैक्शन को जाय तो सेई जिनस रे आमर टिके प्रॉब्लम हुए टाइम टेकिंग हुए किंतु हे जाय सॉल्व हे जाय ओके थैंक यू सो मच नारायण भाई आज कॉल करथबार सो माय फ्रेंड्स आपण माने भी आम सहित कनेक्ट हे परिवे एंड कोहन तो डिजिटल

0: सफर।
1: वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, सुन छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आपनों का साथी स्मृति को सुन छंदी ए सुंदर मॉर्निंग रे एंड सो चली छी डायल इन लाइव। सो डिजिटल पेमेंट और कैश पेमेंट कोटा को पसंद करती प्रिफर करती से विषय स्मृति पचारू छी। आज आपनों को देखिबा फोन लाइन रे जने फ्रेंड आसीगले कि अछंदी। हेलो
2: नमस्कार।
1: जय जगन्नाथ, किए कहउचंती?
2: आवाज को केली।
1: अच्छा आवाज, वेलकम करू छे एफएम रेनबो को। आज भी लागी गला फोन ना?
2: आज्ञा
1: बढ़िया। अच्छा ताले आवाज कोंतु को बटा को ट्रांजैक्शन को आपण प्रेफर करंती, डिजिटल और कैश?
2: डिजिटल पेमेंट जुगत हे गलाडी।
1: हां
2: आउ हम मते डिजिटल ठीक है।
1: डिजिटल ता ठीक माने डिपेंडेंट पर हे गलाडी ना जेम दे।
2: आ गया
1: माने आउ कैश कैरी करना ना
2: प्लान दे बे पारो ई होजी बडो बडो जो टेंशन आसु जे दूर दूर बाहर रहउ छी इंडिया बाहर रहउ छी।
1: हां
2: ओके बेटा बेटा दउ छु जो गाडी जतु आसु जे माते ती बडो बडो माल रहउ छी तार भी हे डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट पर रहउ छी। आ एमिति भूल थर थर आम हईराण पड़ी
1: जाऊ
2: मेकअप
1: करीएम को बैंक को कैश उठा हो
2: आम तो ऑफिस जाऊ 8 घंटा बैंक जीबू के काम पड़े सब
1: हाथ पहांता
2: सपिंग जाऊँगी डिजिटल मध्यम
1: ओके ठीक अच्छे आवास बहुत बढ़िया लगला। थैंक यू सो मच आज कॉल कर थी बारो।
2: हाँ थैंक यू बाबा नमस्कार।
1: फटाफट जोड़ी हूं मो सहित 9:13 अलरेडी हो गलानी माने 10 पर्यंत ही डायल इन लाइव आपण माने जानिछंती एंड ता परे 10:11 रेनबो एसएमएस आपण मानकर रिक्वेस्टेड माने अनुरोध रो गीतर कार्यक्रम स्टार्ट हो। सो
3: 06713013153
1: हाँ भल अच्छे
3: भल
1: पेमेंट और कैश पेमेंट कौटा प्रिफर कर
3: डिजिटल युग जेतु चली जे हमकु सेई युग सेत ताळा दबो पई ताळा देकी जीवा पई पडियो।
1: ओके
3: मु प्राय जेतु मु फाइनेंसिंग लाइन रे काम करे।

0: वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, सुन शांति आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक स्मृति रही आज रही सुंदर सकाळ रे आपण मानक सहित कनेक्टेड रही एंड पचारु छी आपण मानंकु जे डिजिटल पेमेंट और कैश पेमेंट कोटा को प्रेफर करंती आपण माने 0671230353 ए नंबर रे आपण माने डायल करिकी मो सहित कनेक्ट हे परिवे। हेलो,
1: भगवान की पूजा करने से माँ बाप नहीं मिलते हैं, माँ बाप की सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं। नमस्कार आज्ञा, सुबह सकाळ।
0: सुबह सकाळ नमस्कार, किए कहो चंदी?
1: राजहंस
0: रु प्रशांत आम सहित कनेक्ट हो जाए चंदी। तेरे प्रशांत भाई को सहित आम गत थर भी कथा ही थी ना, केमती अच्छा
1: मैम? आपंक सहित कथा हवा गोटे स्वप्न टाइप रनेक दिन के लगला के लगी जाइए जदि आप ट्रफिक रखी डिजिटल पेमेंट जदि सहज कि कौन सी ना कौन सी

0: सुन चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छी डायल इन लाइव एंड आज रही लाइव रे स्मृति रही छी आपण मानक पाखरे 0671-2303-153 ए नंबर रे आपण माने मो सहित कनेक्ट हो चंदी एफएम रेनबो रे हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो किए कहो चंदी
1: बाणे नमस्कार जय जगन्नाथ
0: जय जगन्नाथ राजेश भाई
1: आज्ञा
0: ओके
1: अपन साइबर अटैक होवे ने सेम जे घंटा भीतर लकाजर कॉल आज्ञा मु लगे लगे धया आइ गरेनी बिल्ले रे अछि आ घरा रे सिजुची आउ
0: साइबर अटैक बढ़िया कथा कहो चंदी
1: एकका थर के जदी घंटाए प्रोग्राम रे 10 20 टा कॉल लेबे जदी हजार
0: कौन करिबा अटैक माने टाइम पूर्व अटैक हो जाउ जे मो
1: गोडे बाउस बुद्धा रे दीटा उपुड़ी पड़ला तको हाणु दिली बाडे लगे चल जी चल लाग जे थरे रिंग गेला कटि गेला सेकंड टाइम जाओ बेला बोलो मां सारला को कृपा रे आपण उठैले आउ
0: अच्छा ओके राजेश भाई आज हम सहित कनेक्ट हे चंदी कोन तो डिजिटल पेमेंट और कैश पेमेंट कोटा को प्रेफर करंती
1: ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦିଲସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଏ ଟପିକ ଉପରେ ଭଉଣୀ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଳି ଯୁଗ ଏଆଇ ଜମାନା ସିସିଟିଭି ଜମାନାର ଅଛେ ତେଣୁ ଯୁଗ ସହିତ ତାଳା ଦେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇ ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଯୋଉ ଅଛି ପେମେଣ୍ଟ ହଉ କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ପେମେଣ୍ଟ ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମରେ ହବ ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେବି ଚାଟ କେ ବି 5 ଟଙ୍କା ଦେବି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସ୍କାନରରେ ସ୍କାନ କରିବି ତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ତେଣୁ ଛୋଟ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମିନିମମ ଗୋଟେ ରହୁ ଟଙ୍କା 500 ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ହଉ ଆଉ ବଡ ବଡ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା

0: रीमा सोलार पैनल लगे दे, सोलार पैनल लगे दे। केबे ठु मोर सब सांग माने कहुतिले, किंतु मु मानिली जेबे प्रधानमंत्री कहिले।
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मु प्रधानमंत्री कहिबा परे सोलार पैनल लगेली, आउ मोर बिजुली बिल जीरो आसुची। आपण भी लगांतु
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना सह जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in। सूर्य घर
3: म्यूजिकली योर आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को आपण माने सुनिछंदी। समय वर्तमान 10टा ओलेरी हेगलाणी एंड सो मध्य साथे साथे स्टार्ट हेगलाणी रेनबो एसएमएस। सो इठी जो माने हमको नुआ करिके सुनिछंदी समस्तंको आमे कहुछो जे आपण माने आपण मानकर मनपसंद गीत सुनि परिबे, से हिंदी फिल्म सॉन्ग हो, ओडिया फिल्म सॉन्ग हो, एल्बम गीत हो, तो आपण माने सुनि परिबे व्हाट्सएप एवं एसएमएस माध्यम रे हमको मेसेज करी। व्हाट्सएप जदि करबा पई चाहुचंती ताहले 8895254200 8895254200 ए नंबर रे आपण माने व्हाट्सएप करि परंती हमर ऑफिशियल व्हाट्सएप आईडी रे। एंड आपण आपणकर मनपसंद रा गीत को फिल्म रो एवं सेई फिल्म रो को गीत सुनिबा पई चाहुचंती तार टिके डिटेल्स एंड कोठु कहुचंती आपणक ना एड्रेस सह पठाई दियंतु आम पाखकु। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारा लव लेटर सभी व्हाट्सएप में हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में भरा हुआ है, क्या करे यार। तबे समय नष्ट करिवा नी, आपण का लव लेटर्स पढ़िवा एंड गीत प्ले करिवा। आम सहित कनेक्ट हेई चंती डम्बरुधर रथ शर्मा, सुरक्षा सहाय सहयोग भवन सेक्टर 13 सीडीए कटक रु आमको व्हाट्सएप करिछंदी। लिखले गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड सुनिया पई चाहि चंदी 1975 फिल्म मिली रो बहुत ही सुंदर गीत मैंने कहा फूलों से, ये गीत टिकु एंड डेडिकेट करिछंदी टू माय डियर फ्रेंड एंड ऑल माय लवली श्रोता श्रोता ब्रदर्स एंड सिस्टर समस्तंकु। तबे चलंतु डम्बरुधर रथ शर्मा आपनको पहुंचौछि आपनको मनपसंद गीत।

सुनी चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। सो चलन तो नेक्स्ट व्हाट्सएप रे किए मेसेज कर चंदी देखिबा। परमानंद महापात्र रामचंद्रपुर दुर्गापुर बांकी कटक रु आम सहित कनेक्ट हो चंदी सुनिबा पई चाहि चंदी अनाड़ी फिल्म का गाना क्या मौसम आया है गीतटी को एंड डेडिकेट कर चंदी गीतटी को समस्त को ऑल श्रोता समस्त को गुड मॉर्निंग मध्य जणाई चंदी।

सुनी छी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छी रेनबो एसएमएस स्मृति पढ़ी छी आपण मानकर मीठा मीठा लव लेटर सज रही ब्यूटीफुल मॉर्निंग रे सो मोहरा फिल्म रो गीत ना कजरे की धार ना मोतियों के हारे गीत टिके सुनिया पई चाहि छथि प्रमोद कुमार साहू डीह साही काधो पदा जगत सिंहपुर रो

समय वर्तमान सकाळ 10:24 मिनिट एंड रेनबो एसएमएस सो चली एत सारा एसएमएस अनुरोध रीत ओके सो आम सहित एसएमएस मध्यम बहुत गुड़े फ्रेंड्स जोड़ी मुनि रानी सोना चंदन संजू संतोष निर्मला मामाली कांतो लाठगढ़ आम सहित कनेक्ट होती लिखले जय श्री राधे राधे ओडिया फिल्म अंजली गोटे सुंदर गीत राति दरियार सपन बैत गीत शुणा चाहते ईरा महांती विभु किशोर कंठरू सो चलंतु पहुंचौछि आपनको मन पसंद रे सुंदर गीतटी

सुनी चुनी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक फ्रिक्वेन्सी बाहर जो मैंने आमको सुनी चंदी से मैंने आमको न्यूज ऑन एआईआर आप लाइव स्ट्रीमिंग रे कनेक्टेड है चंदी आमो सह तबे चलन तो सो चली ची रेनबो एसएमएस एंड आमको एसएमएस पेज रे कनेक्ट है चंदी रमेश चंद्र साहू ओह कमा भापो ढेंकनल रु सुनिया पे चाहि चंदी काही गले श्याम घन गीत टी बंधु महंती ओडिया चलचित्र रो

ओके सो व्हाट्सएप रे क्या करे यार, व्हाट्सएप एसएमएस इतने सारा मेसेज क्या मैंने सीमित समय भितर समस्त गीत को प्ले करवा पॉसिबल होनी। तबे चौमुख बालेश्वर रु नूपुर कार्तिक पुरुषोत्तम बसुमती सौम्यरंजन पद्मावती सानू एवं ममता आम सहित कनेक्ट होती व्हाट्सएप रे। सोले फिल्म रीत शुणापी चाहती होली के दिन दिल खिल जाते हैं गीत टेको

तबे बहुत जन श्रोता आम सहित कनेक्ट होते सुनील कांत महांति सिलु एंड आकृति देवकाली शंखतराज कटकू आम सहित कनेक्ट होते हमसे जुड़े हुए थे दतरंगी भाटपड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेन्द्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा हमसे जुड़े हुए थे आम सहित कनेक्ट होते करुणाकर मोहिनी एवं यक्षिणी बांगोरे आनंदपुर केउंझरु आम सहित कनेक्ट होते सुचित्रा सेनापति सहित नगर भुवनेश्वर।

रेमुंडारु आयुष सत्यभामा एवं लिंगराज मेहर आम सहित कनेक्ट होते आम सहित मंजुबाला पात्र भक्ति प्रसाद प्रभात असरला पिचुकोली खोर्धारु कनेक्ट होते प्रभात बलियार सिंह चंदन टोनी बांकी कलेज बांकीरु एवं आम सहित कनेक्ट होते देवाकर सेठी सेक्टर सिक्स सीडीए कटक्रु आम सहित कनेक्ट होती व्हाट्सएप मध्यम आम सहित कनेक्ट होते सुधा सड़ंगीरु उर्मिला बेहरा प्रशांत कुमार बेहरा लिपु लुटु नाती गुगला नातुणी नाड़ी एवं आम सहित कनेक्ट होते टुकु चुकु पप्पू शिवानी टिकी मिकी मणियाबंध संतरावाली बड़म्बारु आम सहित कनेक्ट होते आम सहित कनेक्ट होते सुमंत कुमार राउत पुतुरा कान्हा ओस्तिया बांकी आठगढ़ कटक्रु बहुत सारा लिसनर्स आम सहित वर्तमान व्हाट्सएप मध्यम कनेक्ट होती तो समस्त नेम निहाती भाव पढ़वी कारण समय सरी सरी आसिले आम सहित कनेक्ट होते विजय कुमार दास अस्मिता दास मामुनी एंड पूजा सौरी महासिंहपुर डिस्ट्रिक्ट कटक्रु आम सहित कनेक्ट होते आबास सेन रोहित सेन दीपक कुमार अशोक कुमार राजकुमार भरद्वाज बिमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा राजदीप राय रुचिका राय टाटा स्टील प्लांट रु आम सहित कनेक्ट होते आम सहित नारायण प्रधान बी बरमपुर बुगुड़ा गंजाम रु कनेक्ट होते आम सहित कनेक्ट होते महम्मदपुर बिलहाट कटक्रु रथ आम सहित कनेक्ट होते सोम प्रकाश भारतचंद्र नायक कल्पना महांती आम सहित कनेक्ट होते सीडीए सेक्टर सिक्स कटक्रु से हितेन्द्र दास आसाम्रु आम सहित कनेक्ट होते देन निर्मला बेहरा संतोष बेहरा नातुणी आध्यासा कांतोल आठगढ़ आम सहित कनेक्ट होते हालू भाई सियान आठगढ़ आम सहित कनेक्ट होते रमेश चंद्र साहू औकमा भापो ढेंकनाल राजेन्द्र नन्ना नुआगाँ आम सहित कनेक्ट होते आम सहित कनेक्ट होते पटनारु संतोष भोई आम सहित कनेक्ट होते समस्त दिल से धन्यवाद जनाऊ एंड समस्ते एमती ही भल पाइबा एफएम रेनबो को दे था एंड समय वर्तमान सरी सरी आसिले स्मृति को दिंत विदाय एंड परवर्त आरजे कि समय पर सहित कनेक्ट होते स्टे ट्यून 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

वो भीगे बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम, इस दिल से क्या

मेरा, अभी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रह

0: सधैँ सधैँकी नुहेँ सुरेश वाडकरका असाधारण संगीत अवदान तक अनेक पुरस्कार और सम्मान पद्मश्री पुरस्कार 2021 संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार 2018 2023 लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश वाडकर गायक शैली एत सुंदर जे दर्शकों श्रोता हृदय को छुई जाए
1: तुम ऐसा करो ये गाओ

0: आरे रीमा सोलार पैनल लगे दे सोलार पैनल लगे दे केबे ठु मोर सबु सांग माने कहुतिले किंतु मु मानिली जेबे प्रधानमंत्री कहिले
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मु प्रधानमंत्री कहिबा परे सोलार पैनल लगेली आउ मोर बिजुली बिल जीरो आसुची आपण भी लगांतु।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना सह जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in।

वेलकम ब्याक वन्स अगेन ट्यून करछन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चले छि केछि कथा केछि गीत। हां साथी, प्रेम केवल मणि समथिन सीमित नहि, प्रकृति प्रेम मध्य, पशु पक्षी प्रेम मध्य रहि छि, देश प्रति प्रेम मध्य सम्मान भाव रे महत्वपूर्ण। जेउ व्यक्ति प्रकृति को भल पाए ना, तार सुरक्षा पई सचेतन रहि थाए। जेमितिके गच्छ, नदी, पहाड़ एवं जंगल प्रति आमर प्रेम परिवेश को सुरक्षित रखिबार सहायक हुए।

0: ସାଥି ସମୟ ତ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦେଲ୍ ସେ ଦେଲ୍ ତକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक

0: कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi says the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, the country has gained a new identity today on the global stage, from infrastructure to the digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The core aim of the scheme is to reduce maternal and neonatal mortality by facilitating early detection and prompt management of high-risk pregnancies. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. India also slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling militant outfits operating inside its own territory as Fitna al-Hindustan. Speaking at a United Nations Security Council session, India's permanent representative to the United Nations, Ambassador P.

मोटिवेट करती प्रेरणा दिखती निश्चिंत से व्यक्ति जनक आपण को आग को बढ़ियापाई साहय करती तेब साथी आपण मतामत आमको निश्चिंत जनातु आपण को किए मोटिवेट करती आग को जीवापाई प्रेरणा दिखती हाँ साथी आपणकर मत जानवापी आमको एसएमएस करने नंबर टी 09495963210 व्हाट्सअप करेंगे व्हाट्सअप नंबर टी 88952542200 आउ थे कही रखुच 88952542200 फटाफट एसएमएस कर दिंतु शुणी दे गोटे सुंदर गीत जोड़ी रही 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दल से दल तक सहित हाँ साथी आहरी गोटे कथ छाड़ी एसएमएस करने एसएमएस बॉक्स को जातु टाइप करूँ एफएमआरसी टिके स्पेस दिंतु निजर मत सहित देन टिके स्पेस दे निजर ना गाँ ठिकणा लिखा को जमा भी भूलिबेनी।

तेबे साथी या भीतरे आमो पखरे जने श्रोतांकर मेसेज टी आसी पहुंची जाय छी से लिखि चंती मो जीवन रे मो मां जने प्रेरणादायक व्यक्ति से सब बेले मते भल काम करबा एवं परिश्रम करबा पई उत्साहित करंती मु निराश देले से मते साहस दियंती ओ आगो को बढ़िबा को प्रेरणा दियंती तांकर परिश्रम धैर्य ओ स्नेह मते सदा अनुप्राणित करे सेति पई मो मां मो जीवन रो प्रेरणादायक व्यक्ति मेसेज टी करछंती प्रतिमा हरिपुर आपणकर सुंदर मतामत आपणको बहुत बहुत धन्यवाद तेरे साथी आपणकर कण रही मतामत निश्चिंत आपणको जीवन रे केही ना केही आपणको मोटिवेट करिया पई जने व्यक्ति थिबे निश्चिंत आपणकर मतामत आमको जणंतो आपणकर मतामत जणिया पई आमको एसएमएस करिया पई नंबर टी होची 09494963210 व्हाट्सएप मध्ये करी परिबे व्हाट्सएप नंबर टी होची 8895254200 आउथरे कहि रहु छी 8895254200 सेतबेले जेंगे सुनि दे जकडे ब्यूटीफुल ट्रैक एन्जॉय करथन त कनेक्टेड रहथन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सहिता।

वेलकम बैक वन्स अगेन ट्यून करछन्थि 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे सुजाता अछि आपण मन के सहित सो चली छि आज ही चर्चा रे साथी आमे बेले बेले केवल जने व्यक्ति नहि निश्चित काठाउ ना किछि प्रेरणा पाइथाउ जहां हमको आग को बढ़िवारे सहयोग करथाय तेबे साथी आम पाखरे या भितरे आउ जने श्रोतांकर मध्ये मेसेज टी आसी पहुंची जायछि से लिखिछन्ति गुड आफ्टरनून मैम आपनको मध्ये वेरी गुड आफ्टरनून लिखिछन्ति मो जीवन रे मो मा जने प्रेरणादायक व्यक्ति से सबुबले मते भल काम करबा ओ जीवन रे आग को बढ़िबा पई उत्साह दियन्ति जेतबले मो कोनोसी काम रे विफल हुए से मते निराश न होई पुणी आग को जीवा को चेष्टा करबा को कहन्ति तांकर परिश्रम सत्यनिष्ठा ओ सहनशीलता मते बहुत प्रभावित करे से मते श्रृंखलाबद्ध जीवन बिताइबा एवं समस्तंको सम्मान करिबा सिखान्ति तांका कथा ओ कार्यरु मो अनेक भल शिक्षा पाए तांकर प्रेरणा मते सबु परिस्थिति रे दृढ़ रहिबा को सहाय्य करे सेथिपई मो मा मो जीवनर सबुठारु बड प्रेरणादायक व्यक्ति मेसेज टू करछन्ति अदिति कटकरु आपणकर ए सुंदर मतामतटी पई आपणको बहुत बहुत धन्यवाद तेबे साथी परे परे आउ जने श्रोतांकर मध्ये मेसेज टी आसी पहुंची जायछि से लिखिछन्ति गुड आफ्टरनून दीदी आपनक मध्ये वेरी गुड आफ्टरनून लिखिछन्ति प्रेरणा देबा को जने ज्ञानी लोक दरकार सेमिति किछ नहि नेमलेस भगवत गीता रे भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देइछन्ति माने जीवन रो रास्ता चलिबा को सिखैछन्ति लिखिछन्ति दीदी आपणको मोर आन्तरिक धन्यवाद बहुत भल प्रोग्राम पाई आपणको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद मेसेज ट्यून करछन्ति राजेन्द्र नना नुआगाउँ आपणकर सुंदर मतामतरी पाई आपणको बहुत बहुत धन्यवाद तेबे साथी आपणकर कण रहिछ मतामत निश्चिंत हमको आपणकर मतामत जणंतु आपणको आपण काहाठारु प्रेरणा पाथि माने मोटिवेट काहाठारु होइथांदि निश्चिंत आपणकर मतामत जणंतु हमको आपणकर मत जणया पई एसएमएस करिया पई नंबर टी होची 09495963210 व्हाट्सएप मध्ये करि परिबे व्हाट्सएप नंबर टी होची 8895254200 फटाफट एसएमएस करि दंतु सुनि दे जगडे ब्यूटीफुल सा ट्रैक एन्जॉय करथंतु कनेक्टेड हे रहथंतु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सहिता

0: Raj Gaikwad's century, coupled with a 150-run partnership with Tilak Varma, helped India gain control of the innings. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in afternoon trade today. The Sensex rose 267 points to 73,791, while the Nifty added 86 points to 23,209 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading 0.9% higher, while the small-cap 100 index jumped over 1% a short while ago. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government empowered youth, women and farmers in the last 12 years. India hits out at Pakistan in the United Nations, calls it factory of hate. 5-day BRICS agriculture ministers meeting begins in Indore to focus on food security and empowerment of farmers. Strategic road project Zojila Tunnel achieves final breakthrough, bringing all-weather connectivity between Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan completes 10 years. Nationwide celebrations to begin from today. IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe. Also predicts heatwave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series at Dambulla, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे कर्नाटक केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास बुनियादी ढांचे के विस्तार सामाजिक कल्याण रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और

0: सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनीमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्ष

0: में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जेम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार

बिहार तक कर्नाटक अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल सिक्किम रायलसीमा तमिलनाडु पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख उत्तर प्रदेश विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशा।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। यह मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी

मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: चिड़ो था ए आसी खाइबा को देलेबो गे फदे
1: ए ए पसंद है ना नी ठीक अच्छे सुनो

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानू यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी।

0: जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
0: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं, जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा।
1: वा यानी?
0: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई।
1: जी।
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है, जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओ, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है, जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे, जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहाँ का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी न मालूम हो, परिवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। हाँ। बड़ी हवेली तो अब

नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी? अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
1: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ
2: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो।
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और हाँ।
3: हर गोविंद भाई,
2: हाँ?
3: तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
2: कहाँ बड़ी बहुरिया?
3: मेरी माँ के पास।
2: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
3: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
2: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हाले गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
0: अच्छा,
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचा है उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।
3: आ,

0: भाई साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा। घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: जयपुरी
1: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
2: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
3: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
1: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
4: माँ, माँ देखो हरगोबिंद काका आए हैं।
5: पाए लागू माँ जी।
6: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
5: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
6: मेरी बेटी का कोई संवाद?
5: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
6: हाँ?
5: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
6: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
5: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
6: सो तो है।
5: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
6: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
5: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
6: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
5: अच्छा अच्छा माँ जी।
6: हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
1: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी पापड़ अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा।

0: ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठ रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
1: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
2: अरे,
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पाए लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है।
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा, राम राम
3: राम राम
1: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम,
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना, नहीं जाओगी ना।

0: oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: सुनिले प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन

स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: कौन आपण पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना विषय शुणी
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: एथिरे आपणक घर सूर्य घर हेइजिव माने बिजुली बिल जीरो आउ अधिक बिजुली उत्पादन हेले बिजुली ग्रिड को बिकी पैसा रोजगार करि परिबे तेबे बसी छंती कोन पाई एबे ही विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in रे।

सुन करिशन दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल दायक मेक्सिको सिटी रे अवस्थित द नॉटिल्स हाउस ए घर कला आउ स्थापत्य बहुत सुंदर निदर्शन ए घर टी गोटे विशाल सामुद्रिक शंख आकृति रे तयार करा जाय छी प्रथमे जे देखिबो निश्चित भाव आश्चर्यचकित होइजिबो मु तो कभी प्रथम कौन जिते थर गोटे लोक आपको देखिबो ना आश्चर्यचकित होइजिबो तबे प्रकृति रु अनुप्राणित हेई जने प्रसिद्ध आर्किटेक्ट 2006 मसीहारी ए घर को डिजाइन करथिले घर रो भीतर

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

चुनकर शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक શરૂ કરીએ સમય 5:06 42 સેકન્ડ આવ સુધી પાછી આપણક પાખરે નંબર વર્તમાન પાઈ 0671-230-3153 મુ નંબર કહીની કોણ ક્વેશ્ચન કહીની ફોન ઓલરેડી બ્લિંક હેલાણી ટીકે શુણંતુ મુ કોણ પચારુચી કોણ આજીર કથા રહીચી આજી આમે કો વિષયરે ડિસ્કસ કરીવા આપણ જદી એમતી કોલ લગેઈ ચાલીવે क्वेश्चन सुनिकी जो मैंने आंसर भाविक कल लगो थे कल आउ लगे से रिक्वेस्ट करुच्ची समस्त को जे प्रथम शुणतु जे मु कौन कहूँ आज आम कौ विषय डिस्कस करवा कौन कथा हवा निज विषय भावंतु जे आपण से विषय कौन कहे कल लगातु समस्ते अल्प अल्प समय कथा जमी आम मैक्सीम कलर नहीं पारा से ही चेष्टा करवा समस्त भितरे बहुत गुड़े गुण रही राइट बहुत प्रकार गुण रही कौ गुण आम गाड़ी शुणु कौ गुण आम प्रशंसा कराए तेरे आज आम प्रशंसा विषय डिस्कस करवा राइट जे आम भितर आपण भितर कौ गुण रही जो गुण आपण को बहुत प्रशंसा मिले से विषय सेयार करें 0671-230-3153 यस आपण भितर कौ गुण आपण को बहुत प्रशंसा मिले से विषय सेयार करें नंबर 0671-230-3153

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही करता है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

यह स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाईं ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर

बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
0: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

वाली शांति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल दायक तबे सबु बेले प्रथम टिप्स होउची खरा दिन हो शीत दिन हो वर्षा दिन हो पानी प्रचुर पियंतु मिनिमम 3-4 लीटर पानी पियंतु आ खरा दिने अधिक पियंतु पछे याठु कम पानी पियंतुनी लेंबू पानी पियंतु मझे मझे पाउडर पानी दही पानी मध्य पियंतु शरीर भी भल रहइबो ता सहित स्किन भी ग्लो करइबो घर जेतेबेले बाहर छेंती 15-20 मिनिट पूर्वरु सनस्क्रीन लगांतु जोटा आपनको स्किन पई भल ता सहित गरम दिने स्किन बेसी झाड़ जेहेतु बाहर से दिनक मिनिमम 2 थर लाइट फेस वॉश यूज कर पारिबे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास

0: है।
1: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
2: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टॉक दिन नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के

0: बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेगी।
3: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रह रहा हूं।
3: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ॉन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल।

0: हाँ मैं तैयार हूँ। अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community

0: पसेरे तो कानूना जहामागे मागे
1: ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल दाए समीर खटुआ मेसेज करी शंदी नरसिंहपुर केन्द्रापड़ारू परवर्ती मेसेज करी शंदी कन्याकुमारी बेहरा रीतारानी बेहरा संयुक्ता बेहरा भास्कर बेहरा सुदाम चरण नारायण सेन शबनम खान जस्मिन खान केन्दुपाटणा सालेपुर गुड इवनिंग नमस्कार जय जगन्नाथ जनईछंती आपनको माध्यम वेरी गुड इवनिंग नमस्कार जय जगन्नाथ सुनिदेव समानको मनपसंद गीत

ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल दार सुमंत कुमार राउत मेसेज करी शंदी उस्तिया बांकी आठगड़ कटक रु जय जगन्नाथ जणी शंदी तांको पुत्रा कान्हांको गीत डेडिकेट करी शंदी देन मेसेज करी शंदी आलोक चंद्र जेना जाइलो कटक रु सुनिदबा समानको मनपसंद रु गीता

ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेनबो एसएमएस रे परवर्ती मेसेज करी शंदी राकेश संगीता भुवनेश्वर रो देन मेसेज करी शंदी हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नखेलाल वर्मा छत्तीसगढ़ रो देन मेसेज करी शंदी झारखंड रो देवेंद्र तांती राकेश तांती प्रकाश निशा कुमारी रेशमा प्रीति दीपाली एंड देवेंजी हालू भाई मेसेज करी शंदी आठगढ़ रो जय जगन्नाथ जणी शंदी आपण को मध्य जय जगन्नाथ देन मेसेज करी शंदी विजय कुमार दास सस्मिता दास मामुनी पूजा महासिंहपुर बहुग्राम डिस्ट्रिक्ट रो देन मेसेज करी शंदी छत्तीसगढ़ रो कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी दिशा गोस्वामी कल्पना महंती सोम प्रकाश भरतचंद्र नायक सीडीएस सेक्टर 6 कटक रो मेसेज करिछंती देन मेसेज करिछंती सुनील कांत महंती सिलु आकृति देवकाली शंखतराज कटक रो प्रेमानंद महापात्र दुर्गापुर बांकी कटक रु मेसेज करिछंती सोमनाथ साहू जिग्रन पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा रु मेसेज करिछंती कैलाश बेहरा कामिनी बेहरा कंतोर आठगढ़ रु मेसेज करिछंती गदाधर तरसिया मेसेज करिछंती भुवनेश्वर रु आशा करूछी मु सब मेसेज कवर करी देछी रही छी आभा सेन रोहित सेन दीपक कुमार राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट रु मेसेज करिछंती गुड इवनिंग जणिछंती आपणको मध्य वेरी गुड इवनिंग डम्बरुधर रथ शर्मा मेसेज करिछंती सीडी सेक्टर 13 कटक रु सुनिदवा समानको मनपसंद गीत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें इनकी कि डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेक राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

नमस्कार श्रोता बंधु आपने शुणुंट 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दर्शक दल को भावभक्ति भरा कार्यक्रम अर्घ्यथाली को नहीं देव मित्र आज आपण सहित वर्तमान श्री जगन्नाथ भित्ति सुंदर भावभक्ति भरा गीत शुणु था केवल 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दर्शक दल तक

Good morning, apun mane tune kori chhandi 100.4 Akashvani FM Rainbow Kadak Dil Se Dil Tak Kon Dil Se Dil Tak Kri Deva Mitra Achi apun mananka sahita studio kadre samay se jechi 6 baje 50 minute 47 second ebang Katak ra sakalara update ni ki apunanka pakre Deva Mitra Achi ha apun mane jemti jani chhandi aji hochi 8 June 2026 au ha apun mane sunu chhandi mote apunankar ati priya FM station 100.4 Akashvani FM Rainbow Kadak Dil Se Dil Tak re aji sakalara मानिए पानी पाग कौन रहिबा अपडेट निहाती भाव रे आपण मानु को जणई रखिबे आज कटक रे सकाळ आंशिक मेघवा पाग त रही छि काहे कि ना काली जेमति काळ वैसकी हेई छि त आज टिके पाग साधारणत ठंडा रही छि किंतु आज दिन रे गरम आ आद्रता बढिबार संभावना मध्य रही छि और सर्वाधिक तापमात्रा 41 डिग्री भितरे रहिला भली अच्छी एवं संध्या समय रे आपण माने सबुठु लोएस्ट टेंपरेचर 28 डिग्री भली निहाती भाबरे फील करि परबे खाली सेते किन हो केतेक स्थान रे मध्ये हालुका वर्षा किंबा वज्रपात हबार मध्ये संभावना रही छि आउ स्वास्थ्य सूचना कथे जदि देखिबा अत्यधिक खरा जको घरु बाहर थिबा बेले आपण माने निज सहित निजर पानी बोतल निहाती भाबरे कैरी करंतु आउ दिन 11 रु 3टा भितर अनावश्यक बाहर को जिबा को सब बड पई एडांतु खाली सेते किन हो ट्रैफिक सूचना जदि देखिबा ऑफिस समय रे बादामबाड़ी हो लिंक रोड हो मंगलाबाग हो कि चावड़ियागंज अंचल रे जदि आपण माने जानवाहन चलाचली चलाचल वृद्धि हो पारे से जिते जी आपण को यही एरिया ट्रावेल करार अच्छे तेणु घर टिके अल्प आगर टिके निज हाथ में समय रखिकी निहाती भाव में बाहर तो। एंड हाँ आज सकाल सब सकारात्मक चिंताधारा आपण निहाती भाव में मित्रा पहुंचे जीवन में सफलता पाइबा गति नु दिगटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण से आपणकर दिग निहाती भाव में बाछत गोटे पॉजिटिव वे रे निजर दिग बाछत आ सबुले हसी हसी आरंभ करते गोटे नुआ दिन को आपणक कटक आपणक स्वर आपणक रेडियो 100.4 आकाशवाणी एवं रेनबो कटक दिल से दिल तक शुणु था हृदय प्रति कथ को स्टार्ट करू था

0: खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15000 परिवार 2000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाइथिली एबे तो सोलर पैनल लागि जाइछि ना ताहेले जो 4000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
2: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोडी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर। ये तो बड़े जयकर।

सुन शुद्धि अपन वाणी देवो मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे दिल से दिल तक रे शो आरंभ हो जाय छे मॉर्निंग मेलोडी रा यस समस्त को पूरी थारे गुड मॉर्निंग. अच्छा ई सकाळ सकाळ ई सुंदर मुहूर्त रे टिके भावंत तो जते समुद्र कथा कहि परंता से हमको कोन कहि थांता मु तमको तम पाखरे वर्षा आनी पहुंचे दिए तमको तुम मन पसंद रो माछो भी भेटी दिए सुंदर बेलाभूमि टी भेटी दिए आउ मो बेलाभूमि रे तमे माने बसी सुंदर सूर्योदय को उपभोग करबा संगे संगे सूर्य अस्त को भी उपभोग करथा केबे केबे मो बेलाभूमि रे तुमे बाली घर टी तोळत केबे केबे तुमे मो ढेउ रे आनंद को साउंड किंतु ता प्रतिबदल रे तमे मते कोन दोछ ए प्लास्टिक ए आवर्जना आउ ए प्रदूषण सकल सकल चिंतारे पकेई देला ना समुद्र आपण को एक सब कथा कहे कि टिके भावंतु तो पृथ्वीर प्राय 70% अंश जल रे आवृत आउ सेथिरे समुद्र रो भूमिका सबुठु अतुलनीय आमे समुद्र कूल रे रहू कि न रहू समुद्र आम समस्तक जीवन सहित जड़ित आउ आज हेउछि जून 8 तारीख विश्व महासागर दिवस. हाँ समुद्र कथा कहुची किंतु समुद्र पाई आमर भी अनेक दायित्व रही तेरे चलतु ना आज गोटे छोट संकल्प नवा जे अनावश्यक प्लास्टिक व्यवहार को कमेबा नदी हो पोखरी हो बेलाभूमि को सब बेले पाई सफा रखिबा आमे जेतो बेले भी बेलाभूमि पाखो को जाई थाउ सी बीच पाखो को जाई थाउ आमे प्रायतः किसी खाइले सेठी फिंगी दी थाउ चाटिए पीले सेठी से खोल को पकई दी थाउ ए सबरो आमे निच को निवृत्त रखिबा जदि पारिबा से आखपाखरे थिबा डस्टबिन रे आमे से सब अळिया आवर्जना को पकी पारिबा एवं जो माने भी समुद्र रो स्वच्छता विभाग रे रहुचंते से मानको भी मु निहाती रिक्वेस्ट करबी कि से आखपाखरे बहुत सारा डस्टबिन निहाती रखिबा दरकार परिवेश प्रति आमे समस्त दायित्ववान हेबा दरकार. हां आ ओडिसा रो समुद्र भ्रमण सबुठु मजेदार हे थाय से पुरी हो गोपालपुर हो कि चांदीपुर हो कि पारादीप सी बीच हो ये सब किछि सी बीच रो मजा नियारा थाय आ सबुठु भिन्न थाय. आपण भी विभिन्न सी बीच को जाई थिबे आ ओडिसा रे रही के जदि आपण सी बीच पाख को जाई थिबे जाई नथिबे एकथा कहले तो बिल्कुल भी मो मानिबेनी समुद्र रो नीलिमा भली आम चिंताधारा को भी विशाल करबा दरकार. समस्तंकु एफएम रेनबो परिवार तरफरु हैप्पी वर्ल्ड ओसन डे सुरथांत ओझुमथांत देवमित्र सहित 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक दल से दल ताकरी स्टे ट्यून्ड.

0: सुनी शुंदी अपने माने देवो मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का टेक दिल से दिल तक रे दिल से दिल तक रे शो चले छ डाल इन लाइव रो चलन देखबो नेक्स्ट मोदी के डाल कर शुंदी अनसी कोन कहु शुंदी आज रे टॉपिक को नेके हेलो हेलो
1: हां सुबह सकाळ तवा तेरा मैम नमस्कार
0: सुबह सकाळ नमस्कार के कहु छंती कोट कहु छंती
1: मना पंडा कोटिला कनापुर दावसपुर को दली
0: आगे आपन का आख पकर इमती लोक किए
1: हां देखो ने एंदे तो बहुत लोक छंदे तने विश्वास करे म जाने बंधु को कथा सदा बबलू 2023 रो 2000

0: सोचारे छि डालिन लाइव रो चलंद देखियो हम को नेक्स्ट के डायल करि छंदी एंड से कोन कहू छंदी आज रो टॉपिक को नीति
1: हेलो
2: नमस्कार जय जगन्नाथ सीमाचल कोतली खोरतारु
0: नमस्कार जय जगन्नाथ आज रो टॉपिक ऊपर कोन कहबे
2: गाय इटा हला गोटे मान आमर जिते मिस्त्री अच्छा लाइक केसी मिस्त्री हो कि प्लम्बर हो एटा गोटे साधारण जिनस फोन करू अरे आमर आज सर ये आप घर पाखे अच्छे तापर सर आप छक पाखे पहुंचे सर आप घर पाखे जो पान दुकान अच्छे से आप अपेक्षा करेंगे तापर अरे दि घंटा गला अरे कौटी टिके आउ जन फोन आसगला तो सी पड़े तापर हाँ मुझे तो पहुंचल एमती
0: नानी
2: कण जार मान जन्मदिन आम जीव कटक रु आस भाई पुरी रु आस
0: मुझे
2: मझे पिपिली पाखे मुझे बस रही ओल्ल पड़ी कह भाई तो आस ठिया मुझे
0: अढ़े
2: घंटा पाखापाखि अपेक्षा कली बाहर पुपा ड्रेस किणलाके आस पहला पूरा राग कहे आउ रही घर को पल लाइव लोकेशन पठे धरने छोट बार फोन
0: अच्छा बहुत भल लगे आपत कथी भाई आमको शुणु थे तो से निचर ये आचरण अच्छी संशोधित करदे आपन को देढ़ घंटा अपेक्षा करते आमती देढ़ मिनिट अपेक्षा न करने पड़े कहीं अपेक्षा करते कष्ट जी अपेक्षा कैसे सी जाचे बहुत बहुत धन्यवाद आप कल कले आप क्या सेयर कले बहुत भल लगे नमस्कार आपण भी कॉल करि परबे हमर नंबर 0671230315 एवं शेयर करि परबे आपण को कथा मो सहित चलन देखबा हमर नेक्स्ट कॉलर के आछंती अन से कोन कहू छंती आज रे टॉपिक को नेकी हेलो
3: हेलो हेलो नमस्कार
0: नमस्कार के कहू छंती कोट कहू छंती
3: पटक साले गुरु छात्र सुजी
0: आ गया आज रे टॉपिक ऊपर कोन कहबे
3: टपिक कौन जदि मुझे आसपाई डेरी कर फोन लगोदेवी पहुंचली ए शिशुघर अच्छी सालेपुर अच्छी कहीकि थकी
0: अच्छा हस्बैंड एमती कम करती ना कौन
3: आज
0: सारे निहाती रिक्वेस्ट कर

0: सुनिश्चित अपने वन्य देवो मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे हम सोचाले छे डालिन लाइव राव तो खूब कम समय हम पखरे चला तो देखिबा हमरो लास्ट कलर की अछंती एंड से कोन कहु छंती इन जोंग रो लास्ट कलर की अछंती चला तो देखिबा। हेलो
1: हेलो
0: गुड मॉर्निंग के कहु छंती कोट कहु छंती
1: मो बालेश्वर को छै खैर
0: के कहु छंती
1: बालेश्वर खैर कहु छी।
0: अच्छा आज रे टॉपिक ऊपर कोन कहबा आपन का आखा पखरे एमती किया छंती जे 5 मिनट कहि 50 मिनट लगे दियंते 5
1: मिनट कहि 50 मिनट हम छात्र छी हम सब स्कूल वाला रे त बाबूतरा कह देथु कि हम जिमो सांग स्कूल जीवा 9टा टाइम रे हम पहुंच जीवा ठीक दूर अछना स्कूल हम टाइम रे पहुंच जा।
0: अच्छा
1: सब बस करे मु जत जाय त घरे पहुंच जे जाई खाउ दो

सुनिश्चित है प्रमाणित वो मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे समय वर्तमान स्टूडियो खड़े रे 10:06:30 एवं स्टार्ट ही जाय छे आपन मानंकर फेवरेट शो रेनबो इस मित्र शो आहो देव मित्र अच्छे आपणक सहित जी आपणकर हृदय रे घर करे आपणकर हृदय रे भाषा पढ़े बुझे आओ आपणकर हृदय पर्यंत पहुंचिबा पाई सब बळ पाई चेष्टा करो थाय यस आपण माने जदि निज मनपसंद गीत सुनिबा को चाहुचें आम थ्रो रे ताहाले बिल्कुल भी लेट करंतो नै निजर इनबॉक्स को जानतो टाइप करंतो FMRC स्पेस दे आपण को गीत सुनिबा को चाहुचें तारणा स्पेस दे गीत टिको फिल्म बा एल्बम रो आसी तारणा लिखंतो स्पेस दे आपण कहा को डेडिकेट करबा को चाहुचें तांकर ना लिखंतो तांक पई जदि किछ स्पेशल मेसेज अछि निहाती भाव रे लिखंतो एवं परे परे पठाई दियंतो आम पाखो को पठेबा पई नंबर टी होउछि 0949596 3210 आपण माने चाहिले आमको व्हाट्सएप माध्यम रे मध्य मेसेज करि परिबे हमरो व्हाट्सएप नंबर जे होछि 8895254200 आपणक एसएमएस अपेक्षा रे देव मित्र शोर रहइबो चलन त देखबा आजर प्रथम एसएमएस के कोट लिखि पठि जांती एवं सी कोन को लिखि जांती एही एसएमएस आसछि मानिया बंधरो सुनिया पटना बडम्बर लेखि चंती आमो पाको को हेमंत चांद लेखि चंती गुड मॉर्निंग दीदी तुमको मध्यम वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत लेखि चंती जय जगन्नाथ सुनिबा को चाहै चंती मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी चलचित्र रो चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली निहाते बाबरे ब्यूटीफुल सा एवरग्रीन गीत मो अपन को शेयर सुनिबी चलन तो देखिबा परवर्ती एसएमएस के कोठ लेखि चंती एही एसएमएस लेखि चंती प्रकाश गोप्रो लेखि चंती तुम आरंभ तुम शेष गीत को सुनिबा को चाहै चंती तार टाइटल ट्रैक टिको एवं डेडिकेट कर छन मते थैंक यू सो मच फॉर योर स्वीट जेस्चर चलन तो देखियो परवर्ती एसएमएस आडो को हमें बढ़िवा पूर्व सुनि नबा बैक टू बैक ए दुटी प्रोफाइल ट्रैक को स्टे कनेक्टेड एंड स्टे म्यूजिकल

சுனிச்சந்தி அப்புறமா ரெயின்போ எஸ்எம்எஸ் 100.4 ஆகாஷவாணி எஃப்எம் ரெயின்போ கட்டக் தில் சே தில் தக்ரே தில் சே தில் தக்ரே தவ மித்ரா ஆச்சா பணங்க சைத சலந்து தேக்கிவா அமர பரவர்த்தி எஸ்எம்எஸ் கே கூட் லிக்கு சந்தி எவன் கால் லிக்கு சந்தி யே எஸ்எம்எஸ் ஹமே ஆ ரஹா ஹே தத்ரங்கி भाटापारा छत्तीसगढ़ से और हमें लिख रहे हैं ये मैसेज हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और निखिलाल वर्मा और उनका पसंदीदा गाना है लव स्टोरी चलचित्र से देखा मैंने देखा एक सपना जरूर आपका मनपसंद गाना हम जरूर सुनाएंगे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक से चलंतु देखिबा नेक्स्ट एसएमएस हमको के कोटु पठी छंती एवं से कोन सुनिबा को चाहि छंती एही एसएमएस हसो छे आमो पाखो को माणिया बंध बडंबारो लेखि के पठी छंती टुकुना पात्र सुनिबा को चाहि छंती बाहुडीबे मो जगा बळिया चलचित्र रो बहुत सुंदर गीत टिए इरा महंती का कंठ रे निहाती भाबरे तांको मनपसंद रो गीत मु तांको निहाती सुनेबी सुनिबा को चाहि छंती सात सुर परा गीत टिके सुनिबा को चाहि छंती ताले चलंतु बिल्कुल भी लेट न करी सुनि रबा बैक टू बैक एई दुरी बरफुल ट्रैक को स्टे कनेक्टेड एंड स्टे म्यूजिकल

जाके समंदर के किनारे तुम अपने हाथों में पानी उठा लेना, जाके समंदर के किनारे तुम अपने हाथों में पानी उठा लेना, जितना उठा लो वो चाहत तुम्हारी, और जो ना उठा सको वो मोहब्बत हमारी। शिवली जी अपना का सरिता अपना सुनो चौधरी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। केवल सागर किनारे गीत कौन पाई एमती आहरी बहुत सारा गीत आम देखा पाई अभिनेत्री हिसाब रे चलचित्र रिलीज हुए बॉबी यस प्रथम चलचित्र ऋषि कपूर सहित अभिनय करी से रातारती स्टार हो जाते एवं ये फिल्म भारतीय सिनेमार गोटे क्लासिक प्रेम कहानी चलचित्र कहले चले। आउ सागर चलचित्र कथा कौन बा कहि आपणको साथी आपणकर मध्य अति प्रिय मोर मध्य अति प्रिय 1985 रे जते बेले सागर चलचित्र रिलीज हुई ऋषि कपूर एवं कमल हासन का सहित अभिनय करथिले से एही फिल्म पई मध्य से फिल्म फेयर श्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मध्य जितथिले। इत्ते सारा कथा तांक विषय रे कहलिनी माने आपण निश्चित भाव रे गेस करि सारथिबे जे आमे आज कहा विषय रे कथा हवा कलाकार कार्यक्रम रे सी हो छंती सुंदरी नायिका बॉलीवुड रो डिंपल कबाडिया

हासिल करा जाई परी थाए। केवल हिंदी चलचित्र नुह क्रिस्टोफर नोलान करो हॉलीवुड फिल्म रे मध्य डिंपल को आमे देखिबा को पाइथिलु प्रिया सिंह करो भूमिका रे जहां कि अंतरजातीय दर्शकों को मध्य रे मध्ये चर्चित होइतला तांकर अभिनय डिंपल का विषय आमे कथा बतें जारी रहितबो वर्तमान सुनतो आ गोटे तांकर अभिनीत गोटे सुंदर गीतटी

अनिल कपूर एवं जैकी श्रॉफ को सहित अभिनीत ए चलचित्र रे आमे डिंपल कवाडिया को देखिया को पाइथिलु खाली सेति कि न साथी रामलखन चलचित्र रिलीज हुए 1989 रे एवं परपर रिलीज हुए फिल्म लेकिन 1991 रे जेउथरी कि गुलजार कर निर्देशित ए फिल्म रे तांकर अभिनय रहस्यमय एवं भावप्रवण थिला एवं चलचित्र मध्ये आपणकर मध्ये मने थिबो तेणु चलत ना जब लेकिन चलचित्र विषय डिस्कशन चलती मैंने तार गीत के न शुणी शुणी नि मीठा गीत टी यारा सिली सिली

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है।

अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट ना हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से